नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज और स्वागत है आपका 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। इस नए वर्ष में एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जिसका शीर्षक है सुनो भाई साधो। इसमें कबीर के दोहों पर व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले कबीर की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है उसको हम देखेंगे। आज की इस शोर भरी दुनिया में जहां हर कोई चिल्ला रहा है पर कोई सुन नहीं रहा, जहां धर्म जाति और विचारधाराओं की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, वहां एक आवाज़ 500 सालों से गूंज रही है। एक ऐसी आवाज़ जो न डराती हैं न बहलाती हैं बल्कि सीधा आईना दिखाती हैं। वो आवाज़ है काशी के उस फकीर की जिसे दुनिया संत कबीर के नाम से जानती है। दोस्तों, कबीर कोई महलों में रहने वाले दार्शनिक नहीं थे, वे एक जुलाह थे, कपड़ा बुनना उनकी आजीविका थी, लेकिन सत्य को बुनना उनकी साधना। उनका संघर्ष केवल गरीबी से नहीं था बल्कि उस दौर के पाखंड से था। कल्पना कीजिए उस समय की काशी की, जहां एक तरफ पंडितों का वर्चस्व था और दूसरी तरफ मुल्लाओं की सत्ता। कबीर ने इन दोनों के बीच खड़े होकर निडरता से कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी उन्होंने कभी कागज कलम छुई नहीं, लेकिन उनकी आंखों ने जो देखा वह कागज की लिखी से कहीं बड़ा था। उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें शहर से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन कबीर का संघर्ष थमा नहीं, क्योंकि उनका संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के पक्ष में था। अब आप सोचेंगे कि आज 2026 में हम 500 साल पुराने कबीर की बात क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो बीमारियां तब थी वो आज भी हैं, सिर्फ उनके चेहरे बदल गए हैं। नफरत, दिखावा, कट्टरता और अहंकार। कबीर एक सामाजिक डॉक्टर थे। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करने के लिए खुद बीमार नहीं होता, वैसे ही कबीर समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उन बुराइयों का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने समाज की नब्ज पकड़ी और बताया कि जब तक पवित्रता का चश्मा पहनकर दूसरों को अपवित्र कहते रहेंगे तब तक हम इंसान नहीं बन पाएंगे। कबीर का एक दोहा हम उदाहरण के लिए देखेंगे।

पैर। इस दोहे से हमें ज्ञात करते हैं कि कबीर किस प्रकार की विचारधारा को समाज को रचने की कोशिश कर रहे थे। इस छोटे से दोहे में कबीर ने जीवन का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु मंत्र दिया है। बाजार में खड़ा होना से तात्पर्य है, कबीर कहते हैं कि सत्य की तलाश हिमालय की गुफाओं में नहीं, बल्कि इस दुनिया के बाजार अर्थात भीड़ के बीच में है। हमें भागना नहीं है, इसी दुनिया में रहकर काम करना है। मांगे सबकी खैर का अर्थ है कि कबीर का कोई धर्म नहीं था, इसलिए वे सबकी भलाई मांग सकें। उनका प्रेम पक्षपाती नहीं था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यह सबसे क्रांतिकारी बात है। अक्सर दोस्ती हमें सच बोलने से रोकती हैं और दुश्मनी हमें अंधा कर देती हैं। कबीर कहते हैं कि इतना तटस्थ हो जाओ कि सच को सच कह सको, यह वही साधारणीकरण है जिसके बारे में हमारे दार्शनिक बात करते हैं कि अपने स्व के ऊपर उठकर पूरी दुनिया को एक समान देखना चाहिए। कबीर की देन यह है कि उन्होंने हमें स्वतंत्र होकर सोचना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना ही धर्म है। आज के इस पहले एपिसोड में बस इतना ही। कल हम कबीर के उस क्रांतिकारी विचार पर बात करेंगे जहां वे कहते हैं कि ईश्वर सातवें आसमान पर नहीं, आपके और मेरे भीतर बैठा है। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, आज किसी को धर्म या जाति की नज़र से नहीं, बस इंसान की नज़र से देखिएगा, शायद आपको वहीं कबीर मिल जाए। सुनते रहिए रेडियो मनभावन 90.8 FM, आपका दोस्त मनोज के साथ। धन्यवाद।

नमस्कार, ओम शांति। आप सबको संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, महाराष्ट्र के संत, उनके बारे में तो जानकारी होगी, निश्चित ही होगी, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र के संत नहीं है, तो सब भारत में भी उनके बारे में काफी पहचान है। इतनी कम उम्र में इतना विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखा। ज्ञानेश्वर महाराज की पहचान ज्यादातर उन्होंने जो ग्रंथ लिखा ज्ञानेश्वरी, इसके लिए की जाती है। और भी उन्होंने भागवत धर्म की स्थापना की। पंडरपुर पे पैदल वारकरी जो जाते हैं महाराष्ट्र में, उनके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। तो ऐसे ये ज्ञानेश्वर जी महाराज, प्यार से उन्हें माउली कहते हैं और हम भी उनको माउली ही कहेंगे। तो ये माउली ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ जो है वो लिखा था कि भगवत गीता जो थी संस्कृत में थी, और उस जमाने में मराठी में, उसमें प्राकृत कहते थे, मराठी भाषिकों के जानकारी के लिए उन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा जो भगवत गीता के ऊपर निरूपण है। देखिए, भगवत गीता जो है 18 अध्याय की है, गीता है, उसमें 700 श्लोक है, और ये 700 श्लोकों के ऊपर जो निरूपण किया है माउली ने, वो 9000 ओवी मीन्स लाइनर या पंक्तियां बोलते हैं, उसमें की है। ये 9000 ओवी में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूरा हो गया, और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा पसायदान लिखा। हमारा मकसद इस रिकॉर्डिंग का, इस शेयरिंग का ये है कि ये पसायदान जो ज्ञानेश्वर जी ने या माउली ने जो लिखा है, उसके बारे में कुछ चिंतन करें, चर्चा करें, क्योंकि ये पसायदान जो है, ये पसायदान 9 लाइन में है, 9 पंक्तियों में है, 9 ओवी में है। अगर उसका शब्द से अर्थ कहेंगे, वर्ड टू वर्ड अगर उसका मीनिंग देखेंगे, तो बहुत संक्षेप में हो जाएगा, 5-10 मिनट में वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइन्स, उसके बारे में जब चिंतन करेंगे तब काफी विस्तार होगा। और हमारा संकल्प ये है, हमारा उद्देश्य ये है, हमारा मकसद ये है कि इस पसायदान के ऊपर हम कुछ चिंतन करें। जैसे हमने कहा था कि 9000 पंक्तियां ओवीया थी, और उसमें से 9 ओवी में पूरा सार, मुझे लगता है पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो पसायदान में है। भगवद गीता में जो ज्ञान दिया था उसका भी कुछ एक्सट्रैक्ट होगा, वो भी ये पसायदान में है, ऐसा मुझे लगता है। ये पसायदान पहले भी मैंने पढ़ा था, अभ्यास किया था और मुखोद्गत भी किया था, लेकिन उसके पीछे इतना कुछ भाव होगा, इतना कुछ अर्थ होगा, गहन अर्थ होगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे मैं ब्रह्मा कुमारियों के संपर्क में आया, वहां का ज्ञान सुना, और फिर जब मैं पढ़ने लगा पसायदान, तब मुझे आश्चर्य लगा कि माउली ने इतना विस्तार से, इतना डेप्थ से, इतनी गहनता पूर्वक वो जो पसायदान लिखा है, उसका उद्देश्य क्या होगा। हर कोई कंपनी का मैनेजर हो या कंपनी का डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो हर कोई अपने कंपनी का एक विजन लिखता है, और ये विजन जो है, वो विजन अगर क्लियर है
तो उसको बहुत अच्छा दृष्टा कहते हैं। ये मावली तो सारे विश्व की है, और ये मावली ने जो विजन दिया है, आने वाले युग का विजन, आने वाले संसार का विजन, या उनकी जो इच्छा थी आने वाले संसार के बारे में, आने वाले विश्व के बारे में, या विश्व परिवर्तन के बारे में, उसकी पिक्चर, उसको चित्रीकरण ये पसायदान में है, ऐसा मुझे लगता है। और एक एक पंक्तियां हम अगर देखेंगे और उसका विवेचन करेंगे, तो फिर उसका गर्भित अर्थ जो है, नॉट ओनली बिटवीन द लाइन्स बट समटाइम्स बियॉन्ड द लाइन्स, हमें पता लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो शुरुआत जो पसायदान की है, आता विश्वात्म के देवे, येणे वागीयज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदान है। और ये जो पसायदान मांगा है विश्वात्मक देव भगवान, जिसे सब हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं या गॉड कहते हैं।

ने सिर्फ ये पसायदान जो है वो मराठी के लिए नहीं मांगा है, भारतवासियों के लिए नहीं मांगा है, उन्होंने सारे विश्व के लिए मांगा है। और विश्व का कल्याण हो, सर्वे पे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सारे विश्व के लिए प्रार्थना है, सारे विश्व के लिए डिमांड है, सारे विश्व के लिए रिक्वेस्ट है। और इतने अच्छे शब्दों में, इतने मधुर शब्दों में मावली ने ये पसायदान मांगा है विश्वात्मक देव के पास। और ये विश्वात्मक देव को उन्होंने संतुष्ट किया है अपने वाक यज्ञ से। वाक यज्ञ मीन्स वाणी का यज्ञ। उन्होंने जो वाणी चलाई, ज्ञानेश्वरी जो सुनाई, वो वाणी का यज्ञ था। उससे उन्हें लगता था कि ये भगवान जो है, विश्वात्मक देव है, संतुष्ट होगा, तोषावे संतुष्ट होगा। अब जैसे कोई संतुष्ट होता है तो दुआ निकलती है, और ये दुआ जब निकलती है तब वो दवा का काम करती है। और इसलिए पहले लाइन में उन्होंने कहा, आता विश्वात्मक देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें अश्वमेघ यज्ञ है, पुत्र कामेष्टि जो दशरथ राजा ने किया था वो यज्ञ है, और ये वाणी का भी यज्ञ है। अनेक प्रकार के यज्ञ है। ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तब ऐसी कहानी है कि प्रभु रामचंद्र जी आए और उन्होंने असुर जो विघ्न डालते थे यज्ञ में, उसमें असुरों का निर्दालन किया। हमारा भी यज्ञ है, हम रोज खाना खाते हैं वो भी यज्ञ है। और इसलिए मराठी में कहते हैं, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरि से, सहज हवन होते नाम घेता फुका से, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। ये सिर्फ उदर भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए हम भोजन नहीं करते हैं, लेकिन वो भी एक यज्ञ है। अग्नि जो है वो जठराग्नि है, और उसको शांत करने के लिए हम उसमें आहुति डालते हैं। ऐसे विचार से अगर हम भोजन करेंगे तो कितना कल्याण होगा। तो ऐसे माउली कहती है, ये भी एक वाणी का यज्ञ है, वाक यज्ञ है, और ये वाक यज्ञ से वो विश्वात्मक देव को संतुष्ट कर रहे हैं। तो पहली लाइन बहुत सुंदर है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। आता विश्वात्मक देवे येणे वाग यज्ञ तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसाय दाने। इसके ऊपर अगले भाग में भी चर्चा करेंगे। तो ये पहला भाग संपूर्ण हुआ। आपसे हम इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले भाग में, अगले एपिसोड में। ओम शांति, नमस्कार।

शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि खुशी शायद होंठों तक सीमित है, चाहे शायद मेरी हंसी तक सीमित है, चाहे मैं जब बच्चों के साथ होता हूं तो जो खिलखिलाहट होती है वहीं तक सीमित है, लेकिन वो हंसी है, खिलखिलाहट है। खुशी मेरे अंदर की बात है, मेरे

0: अंदर की वो फीलिंग है जो मैं खुद क्रिएट कर पाता हूँ। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि लगता था कि यही सब बातें जो बाहरी रीति से हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उसी पर खुशी निर्भर करती है, और निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस श्रृंखला में जहाँ हम बातें करने लगे हैं, वहाँ ये बात समझ में आती है कि ये मेरी अपनी क्वालिटी भी है और मेरी अपनी क्रिएशन है। मज़ेदार बात यह है कि उसे क्रिएट करने के लिए मुझे अपने थॉट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स आ रहे हैं या मैं उन्हें क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी एक नई वोकैबुलरी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जिनका हम रिकैप करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। मैं थॉट तक तो ले आई कि जब हमने उस फीलिंग को देखा कि खुशी कहाँ है, मैंने देखा कि ये सब में ढूंढ रहे थे, ये सब में समझा वो नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने आप को चेक किया तो वो खुशी मेरी अपनी क्रिएशन मुझे समझ में आई, और मेरा थॉट मेरी उस फीलिंग को क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव खुश वाला थॉट जो था वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, और ये जो इतना पावरफुल चीज़ है, इतनी शक्तिशाली वस्तु मेरे पास है, अनुभव कहें या कुछ भी कहें, एनर्जी कहें, वो कैसे क्रिएट होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो थॉट्स क्रिएट करते हैं?
1: हमने जैसे देखा कि परिस्थितियाँ आती हैं, लोग ऊपर नीचे कई बार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, एंड थिंग्स वर बिकमिंग चैलेंजिंग, अनप्रडिक्टेबल। यू नो, सडनली समबडी बिहेव्स इन अ वेरी अनप्रडिक्टेबल वे, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पोंड। तो कभी ना कभी ये एक थॉट चलना शुरू हुआ कि आखिर इस तरह से अगर जीवन चलती जाएगी तो देर इज जस्ट नो वे आई कैन बी हैप्पी। तो फिर हमने जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स हैं, सॉरी, चाहे वो एंग्जाइटी है, वरी है, उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यस, सिचुएशंस आर चैलेंजिंग। तो सिचुएशन पर थॉट डिपेंडेंट है, तो यस, हमेशा खुश रहना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमेशा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने वाली है। हमेशा रिश्तों में हर चीज मेरे अनुसार चले, ये नहीं होने वाला है। लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करें, ये नहीं होने वाला है। आप जैसा मैं सोचूं वैसा बिहेव करें, ये नहीं होने वाला है। सो इफ माई हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन वी रियलाइज्ड के सिचुएशन तो बाहर से आती, थॉट हम करते, और अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें और अपने आप को चेंज करना शुरू करें, हो सकता है हम उसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर सकते। पहली बात तो हैप्पीनेस क्या है, यू नो, दैट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क। वी रियली डोंट नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम यू नो बहुत ज़्यादा कुछ उमंग उत्साह उस तरह की बात कर रहे हैं? हैप्पीनेस डजेंट मीन ऑलवेज दैट यू आर जम्पिंग अप एंड डाउन, लाइक दैट्स नॉट हैप्पीनेस। कहीं कुछ बात हो गई है, घर में कोई हादसा हो गया है, किसी कोई इलनेस है, समबडी हैज लेफ्ट द बॉडी, तो देर इज नॉट क्वेश्चन। आप बोलोगे इस टाइम हाउ कैन आई बी हैप्पी, येस दिस टाइम आई कैन नॉट बी हैप्पी, बट कैन आई बी स्टेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इज इट दैट पेन एंड सोरो ये नेचुरल ही है, ये क्रिएट करना है, क्योंकि जितना हम स्टेबल रह सकेंगे उतना हम उस सिचुएशन को अच्छी तरह से क्रॉस कर सकेंगे। और स्टेबल रहने के लिए मुझे उस सिचुएशन में राइट काइंड ऑफ थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने देखा जो थॉट हम क्रिएट करेंगे उस क्वालिटी की फिर हमें फीलिंग्स जेनरेट होंगी, वो फिर हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर हमारी पर्सनैलिटी बनती जाएगी, एंड देन माई डेस्टिनी। और थॉट्स पर इन्फ्लुएंस किसका होता, क्योंकि आज ये समझ में तो आ गया कि थॉट्स सब कुछ काम कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन थॉट्स को चेंज कैसे करूं, ये तो आदत ही पड़ गई है मुझे नेगेटिव सोचने की। तब वी सॉ लास्ट टाइम कि थॉट्स पर जो चीज़ों का इफेक्ट होता, वन इज इंफॉर्मेशन, वन इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड इज बिलीफ सिस्टम। हमारी जीवन में हम किन मान्यताओं के साथ, बिलीफ्स के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, एंड आई फील पर्सनली कि ये तीनों में से, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्या फीड करना क्या नहीं फीड करना। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमने देखा कि हम बैठ कर उसके ऊपर वर्क करें तो वी कैन क्लीन इट ऑफ, लेकिन बिलीफ सिस्टम इज समथिंग दैट बचपन से शुरू होते होते, एज आई वॉज ग्रोइंग, मेरे अंदर बहुत गहरे deep rooted hai, and sometimes I don't even realize ke mere kaun se belief systems hai.
0: Belief system in the sense ke belief system bane kaise, pura environment tha mera, kya aisa hai cheez
1: belief system banati. Yeah, it can be belief system banne ke liye bhi, it could be environment, it could be jo hame sikhaya gaya, you know, bachpan se. Let's say ke as a child maine ye dekha ke jab bhi mujhse kuch galti hui to mujhe daanta gaya. है ना, या जब भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे पेरेंट्स के अनुसार राइट नहीं था तो मुझे डांटा गया. अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मैंने देखी कि दिस इज द वे, तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि जब भी कोई कुछ ऐसा करे
0: जो आपको पसंद ना हो,
1: आपको राइट ना लगे, तो उसको चेंज करने का तरीका उसको डांटो. तो ये मैंने सीखा ना, इट्स नॉट दैट किसी ने मुझे सिखाया बैठकर, लेकिन मैंने वो सिनारियो से, मैंने सबको अपने आसपास वो करते हुए मैंने वो बिलीफ सिस्टम बनाया, दिस इज द वे इट वर्क्स. तो ये हम बिलीफ सिस्टम्स बनाते गए. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम औरों पर ब्लेम कर दें कि जो भी बिलीफ सिस्टम के लिए, हमें फिर अपने जीवन में आज स्टॉप करके चेक करके देखना पड़ेगा कि वो बिलीफ सिस्टम क्या रिजल्ट क्रिएट करता है. यू नो, हर एक बिलीफ, यू नो, इट्स लाइक अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर बहुत पावरफुल एक सिस्टम है जो हमारे पास है, तो एक कंप्यूटर को चलाने वाला जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम. उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास विंडोज है तो किसी के पास मैक है तो कुछ भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि सारे प्रोग्राम्स जो उस पर चलेंगे
0: वो कैसे चलेंगे.
1: तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना,
0: दिस
1: इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा,
0: इसको तो बहुत सारी चीज, अब जैसे यही एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि दर्द के साथ रहना तो नेचुरल है.
1: क्या एब्सोल्युटली ये एक नेचुरल है. आज टेंशन होना तो नेचुरल है. हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं?
0: कभी खुशी कभी गम, यस,
1: ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है, विच इज ओके. नो वन इज टू चैलेंज माई बिलीफ सिस्टम, आई हैव टू चैलेंज इट माई सेल्फ. मुझे खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ है एक मान्यता है,
0: लेकिन बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस भी तो बन रहा होगा ना.
1: यस yes.
0: तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है, और उसको मैंने बिलीव, जैसे बचपन में भी मैं देखती आई जो, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव होते गए, अनुभवों को मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया.
1: तो अब सपोज मैंने बचपन में ये सीखा कि जब भी कोई गलती करे तो उसको गुस्सा करो, ठीक है, तो मैंने भी ये पकड़ लिया. या मैंने ये सीखा कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं ना तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब नहीं गुस्सा करते ना
0: तब मैं,
1: तो मैं नहीं पढ़ती, तो मेरा अपना मस्ती चलती रहती है. लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने पढ़ा, तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाने का तरीका क्या है, उनको डांट दो ना, वो काम कर देते हैं. नाउ आई टुक दिस बिलीफ सिस्टम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट इन माई लाइफ. तो चाहे वो मेरे ऑफिस में है, चाहे वो मेरे घर पर है, आई एम वर्किंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि किसी से काम करवाना है उनको डांट दो. काम भी हो रहा है, लेकिन क्या मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका इफेक्ट होता है? क्या मेरे रिश्तों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है? एक तरफ से आई एम सेइंग मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हर एक कह रहा है मुझे खुशी चाहिए, दूसरी तरफ से मैंने बिलीफ सिस्टम बनाया कि गुस्से से काम होता है. हैप्पीनेस एंड एंगर, ये दोनों कट्ठे कैसे रहेंगे? हाउ विल इट हैपन? आज मुझे रोज काम करना है, रोज लोगों से काम करवाना है, एंड रोज मैं इसी बिलीफ सिस्टम से काम कर रही हूँ कि गुस्से से काम होता है, गुस्से से काम. तो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर गुस्से वाली, दिस एनर्जी गोज आउट एंड देन द सेम एनर्जी कम्स बैक. तो इतना गुस्सा क्रिएट कर कर कर के सारा दिन, देन व्हाई एम आई सेइंग कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए?
0: काम तो होता गया ना, तो मैं तभी उसको यूज करूंगी ना जब काम नहीं हो रहा होगा.
1: राइट right. तो आप काम करवाने के लिए उसको यूज कर रहे हो ना, लेकिन हमने कभी स्टॉप करके लाइफ में ये चेक करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए जीवन में. ठीक है, सपोज हमने कहा
0: हाँ.
1: कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि गुस्से से काम होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि वंस आई वर्क विद दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए. अब रिजल्ट तो वो वाला नहीं आ रहा ना, रिजल्ट खुशी नहीं आ रही, गुस्सा बार बार करने के बाद खुशी रिजल्ट नहीं हो सकती. तो अगर वो रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन में अपनी जीवन को जीती हूँ कि इंस्ट्रक्शन कुछ और फीड करती जा रही हूँ और रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट करती जा रही हूँ. करूँ गुस्सा, करूँ चिंता और चाहिए खुशी, तो कहाँ से होगी? नाउ अब गुस्से से काम भी क्यों करवा रहे हैं? चाहिए तो खुशी, लेकिन दूसरा बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है कि काम जितना होता जाएगा खुशी सफलता मिलती जाएगी, जितनी सफलता मिलेगी उतनी खुशी मिलेगी. नीड टू स्टॉप एंड चेक. These are belief systems.
0: तो ये तो पूरी जिंदगी मेरे belief system पे जुड़ी
1: है. सब कुछ तो belief system पे है. हर, that's why we said it's the operating system. जिस quality का operating system है, सब कुछ उस पर based है. सारा कुछ उस पर based होगा. सारा दिन में हमें पता भी नहीं चलता हम कितने सारे belief systems के साथ काम करते हैं.
0: तो अभी तो हमें पूरा विंडोज खोलना पड़ेगा. it's a big process actually.
1: But the thing is के belief system and one is the truth. Is this the truth? Anger is natural. ये एक belief है या ये एक सत्यता है? ये मुझे अपने आप के साथ experiment करना पड़ेगा. ये जो belief systems, अगर हम एक भी wrong belief system के साथ चले, see the critical part क्या है? Belief से thought create होगा, thought से destiny create हो रही है. अगर मेरा एक भी belief system थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा?
0: मेरी डेस्टिनी पर.
1: मेरी डेस्टिनी पर आएगा. एंड दैट्स व्हाई स्टॉपिंग एंड चेकिंग माय बिलीफ सिस्टम सारा दिन में. अगर आपके साथ कुछ भी बाहर आप जो एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, कहीं आपको अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है, जस्ट हैव टू स्टॉप एंड चेक मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें काम कर रहा है. एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम उसी टाइम दिखाई दे देगा. इमीजिएटली आपको सिर्फ वो इक्वेशन बनाकर रखनी है अपनी लाइफ में. बिलीफ इज इक्वल टू थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी. बीच का भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ो उसको. दैट तो वो ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग. जैसे ही आपके अंदर कोई थॉट क्रिएट हुई, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बैठे हैं, अभी चार लोग आते हैं सामने, एंड वो चार लोग मेरे से नहीं बात करते, वो चार लोग ज्यादा आपके साथ ही बात करने लग जाते हैं. यू नो दे प्रेजिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू एंड आई एम नॉट फीलिंग नाइस. मुझे अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है ना, मुझे अगर फीलिंग के लेवल पर दिखाई देता, देन आई विल गो बैकवर्ड्स. आई विल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा. कौन सी वाली थॉट क्रिएट हो रही है इसके पीछे? क्या थॉट क्रिएट हो रही है? तो थॉट ये क्रिएट हो रही है, इज शी बेटर देन मी? इज इट दैट पीपल लाइक हर मोर? दिस काइंड ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग, और ये थॉट इज मेकिंग मी फील लो. अब इसके पीछे मुझे बिलीफ सिस्टम अपना चेक करना पड़ेगा. कौन से बिलीफ की वजह से मैंने ये थॉट क्रिएट की? मेरा बिलीफ वो था कि जितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे उतना आई एम अ बेटर पर्सन.
0: ओ गॉड,
1: माय बीइंग गुड, वर्दी, नाइस, व्हाटएवर लेबल हमें लेना है.
0: आई थिंक यू सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम.
1: इट इज बेस्ड ऑन लोगों का अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इवैल्यूएट कर सकती. तो वो बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने वो चार लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए देखा, मैंने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इमिजिएटली द थॉट इज देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, शी इज अ बेटर पर्सन, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, पीपल डोंट लाइक मी. अभी उसके बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होगी?
0: और उसके साथ साथ और इसके साथ जुड़ी हुई और बाकी और गंदी गंदी फीलिंग्स भी आ सकती हैं. ये एक्चुअली जेलेसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर.
1: यस, तो जेलेसी के बेसिस पर स्टार्ट हुई.
0: तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी एंड यू.
1: इट हैज नथिंग.
0: इट हैज एक्चुअली टू डू विद अ बिलीफ सिस्टम व्हिच एक्चुअली अगर मेरे सामने आए तो मुझे कहेगा कि लोगों से क्या फर्क पड़ता है.
1: एब्सोल्युटली.
0: लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैंने फिट किया.
1: हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर हम उसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेक कर लेंगे कि कौन सा बिलीफ मेरा वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर यही बिलीफ वर्क हुआ कि जितना लोग जिसको अप्रिशिएट करते वो ज्यादा अच्छा है. एंड जहाँ ये लोग मेरे पास बात करने नहीं आए, मतलब आई एम नॉट गुड. नाउ दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. और ये डिस्टर्बेंस के कारण मैं जेलस फील करूंगी, फिर मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी. इट्स नथिंग टू डू विद यू एक्चुअली. आप बहुत जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फील करवाना ना. अब इससे रिस्क ये होगा कि भले आपके सामने नहीं, लेकिन अपने आप को अच्छा फील करने के लिए मैं आपकी बुराइयां देखना शुरू कर दूंगी कि क्या है इसमें, क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पता है ये एक्चुअली कैसी है, इनको कुछ मालूम, यू नो. एंड माय इंटेलेक्ट, माय माइंड विल स्टार्ट गोइंग एंड लुकिंग एट.
0: एंड यू नो हियर दिस डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी. यू नो आप दूर होते जाते हैं ऐसे ही.
1: अब जब मैं ये एनर्जी क्रिएट करूंगी तब एक्चुअली लोग मेरे से परे हटेंगे. एक्चुअली हटेंगे, क्योंकि मैंने कौन सी एनर्जी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, नेगेटिविटी की, जेलेसी की. फिर हो सकता है जब मुझे चांस मिले मैं उन्हीं चार लोगों के पास जाकर इनडायरेक्टली थोड़ी सी आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं. तो मैं उनको बोल दूंगी आपको क्या पता है कानुप्रिया के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम they will come to me because and now I'm actually taking them away from me only because of this one belief system. Ab agar usi scene mein main apna belief system change karu, I am who I am, I know who I am, I'm not perfect, I know that very well ki mere andar apni kamzoriyan hain, apni shaktiyan hain, lekin un par mujhe hi kaam karna hai, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या किस बेसिस पर मेरे पास आते हैं, दैट डजंट मैटर. ये जर्नी मेरी अपनी है. तो मेरा आपके साथ जो कंपैरिजन करने की यात्रा होगी, दैट विल स्टॉप. हु आई एम इज बेस्ड ऑन हाउ आई नो माई सेल्फ, नॉट बेस्ड ऑन हाउ पीपल अप्रिशिएट मी और से टू मी. यस, ये नेचुरल है कि अगर आप एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो बेंचमार्क नहीं है. लोगों का आपके पास आना, लोगों का आपके साथ अच्छी तरह से बात करना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. इट इज डेफिनेटली नॉट नेसेसरी. आज के समय में वी कैन सी इट, इट इज पॉसिबल कि आई डोंट लाइक यू और फिर भी मैं आपके पास आऊँ, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँ. एंड अगर आप उस बेसिस पर अपने आप को इवेल्युएट करेंगे तो वो तो बहुत रिस्की है. मुझे अपने आप को खुद इवैल्यूएट करना आना चाहिए, बट फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज माय बिलीव सिस्टम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है और मुझे अपने उस पर काम करना है, अपनी कमजोरियों पे. लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं. हाँ, लोग जो कहते हैं, आई कैन टेक दैट एज अ फीडबैक, बट जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क विद माई सेल्फ. तो एक एक बिलीव सिस्टम मेरे थॉट पर एंड फिर मेरी डेस्टिनी पर काम करता है. और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, इसमें मेरा क्या है, ये तो इनकी वजह से हुआ. इट इज टोटली
0: ऑफ कोर्स यू नो. एंड व्हाट हैपेंस, एंड सडनली आई रियलाइज दैट दिस इज वेयर द फ्रेंडशिप स्टार्ट्स यू नो सोरिंग अप.
1: वो तो डेस्टिनी फॉर द
0: फिर बिल्कुल.
1: एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रेंडशिप, मैं कितने दर्द से गुजरने वाली हूँ अंदर. मेरे अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है, क्यों आ जाता है, हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं. ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है, कॉम्पिटिशन,
0: कि अगर मैं मुझे अच्छा होने के लिए या मुझे जीतने के लिए किसी को तो हारना ही है. जिंदगी एक हार जीत है,
1: जिंदगी एक हार जीत है. बताओ ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना है.
0: जिंदगी इज, लाइफ इज अ वॉर,
1: लाइफ इज अ गेम.
0: यस,
1: लाइफ अगर गेम बोलेंगे, लाइफ इज अ गेम, तो इट ऑलवेज बी के देयर विल बी अ विनर एंड देयर विल ऑलवेज बी अ लूजर. अब अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलूं कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ गेम, इट्स अ वॉर, तो मैं सारा दिन क्या करूंगी औरों के साथ,
0: खेल खेलती रहूंगी ना, गेम खेलती रहूंगी.
1: यस, एंड सारा
0: दिन गेम खेलने में मैं जीत हार को देखती रहूंगी, कौन जीता कौन हारा.
1: एब्सोल्युटली. और जैसे ही अगर मुझे कहीं दिखाई दिया कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कुछ भी कर देना है आपसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आपको क्रिटिसाइज करके आपको नीचे गिराना है, मतलब आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मी गोइंग अहेड ऑफ यू. दिस इज अ बिलीफ सिस्टम. तो एक बिलीफ सिस्टम मेरे पूरे अंदर की सोच को, मेरी फीलिंग को सारा चेंज कर सकता है. एक बार तो रुक कर देखें, वेयर इज द कॉम्पिटिशन.
0: किस बात का कॉम्पिटिशन, कि मेरा जो ये थॉट क्रिएट हुआ है वो किस बिलीफ सिस्टम पे है.
1: स्टॉप करके देखना पड़ेगा, क्या इसके पीछे मेरे अंदर. दिस हैपेंस स्लोली, ऑब्वियसली वो एकदम से पहले दिन पर नहीं होगा, लेकिन कई बार जब भी आपके बिलीफ आपको ध्यान में आए, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, क्योंकि इतने सारे बिलीफ हमारे इतने सारे बिलीव्स हैं कि सपोज मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए मुझे. ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. अगर आपने नहीं अप्रिशिएट किया तो मुझे बुरा, क्यों, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, जब मैंने किसी के लिए कुछ किया तो अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए.
0: प्रेज
1: तो मिलना ही, इट्स सो नेचुरल.
0: सी इट इज नेचुरल. मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट.
1: जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं, हमें इमीडिएटली पता चल जाता है, नहीं मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहती थी. या बिलीफ सिस्टम, अगर मैंने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी तो रिटर्न में अच्छा ही करोगे. बिलीफ सिस्टम है
0: तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा करेगा.
1: क्या जरूरी है आज के वो अच्छा करेगा.
0: हाँ, वो किस थॉट प्रोसेस में. और अच्छा, और अच्छा क्या और होता क्या है?
1: अच्छा और बुरा तो मेरे रेफरेंस पॉइंट से है ना. अच्छा और बुरा आपके रेफरेंस पॉइंट से तो है ही नहीं. आप अपने अनुसार तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो वैसे भी, लेकिन मेरा बेंचमार्क वो
0: ये बना रखा है मैंने. ओह यस, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आती हूँ, मैं आप जब बीमार हो जाते हो मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ, मैं बीमार हो गई पूछा तक नहीं आप
1: नाव से. फिर थॉट कौन सी क्रिएट हुई, फीलिंग कौन सी क्रिएट हुई, अगली बार मैं नहीं करूंगी आपके लिए. डेस्टिनी, दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग. नेक्स्ट वी चेंज आवर बिलीफ सिस्टम एंड वी से मैं वो करूंगी जो करते हुए
0: मुझे अच्छा
1: लगता है, नॉट मैं वो करूंगी ताकि इन रिटर्न आप करेंगे, क्योंकि उस बिलीफ सिस्टम से मुझे क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला,
0: हर पेन, यस रिजेक्शन पेन अननेसेसरीली, यू नो, एंड देन वी स्टार्ट प्रेशराइजिंग द अदर पर्सन आल्सो.
1: एब्सोल्युटली,
0: यू नो, वी स्टार्ट एक्सपेक्ट, यही एक्सपेक्टेशंस आने लगती हैं फिर.
1: मैंने आपके लिए इतना किया, हाँ. आपने मेरे लिए क्या किया, या मैंने आपके लिए इतना पूरी जीवन मैंने आपके लिए ही किया, आपने क्या किया. तो ये बिलीफ सिस्टम्स की चेकिंग क्यों जरूरी है, बिलीफ सिस्टम्स को धीरे धीरे चेंज करते जाएं और वो वाले बिलीफ सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें जो हमारे जीवन को स्मूथ, easy and happiness hum create kar sakte hain. If I can change my belief system and I can say I will do what I want without expecting anything, is it possible to lead?
0: Saying it is easy,
1: that ek bar se ha to doing will come with practice na, theek hai na, ek bar mein nahi hoga.
0: Pain again, this is what I'm saying ki bar bar hum jo baat kar rahe happiness index, agar maine kuch kiya hua hai kisi ke liye और वो वापस, या मेरी जब सिचुएशन आई तो उसने वैसे नहीं रिएक्ट किया या नहीं किया, तो वो जो पेन है उसमें मैं उस वक्त तो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकती,
1: नहीं कर सकती, क्योंकि आपने वो प्रोग्रामिंग अपनी कर ली थी कि मैंने आपके लिए किया
0: तो मुझे आपको करना,
1: तो
0: ही
1: आपको करना ही है. यू सी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जिसके लिए मैं अच्छा करूंगी उसको मेरे लिए अच्छा करना ही है. जैसे ही वो अगर नहीं करते हैं या वो उस तरह से नहीं कर, सी एवरीवन इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. हो सकता है आपकी नेचर है कि आप बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब आप डिनर होस्ट करेंगे तो आप इतना कुछ कर देंगे, आप गिफ्ट्स देंगे तो इतने देंगे, आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं. हो सकता है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. मेरे लिए आप घर पर आओगे तो मैं पूछूंगी आप चाय पियोगे क्या, यू विल से लाइक आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो पूरा डिनर आपके लिए बनाया था और आप मुझे पूछ रहे हैं चाय पियोगे कि नहीं पियोगे. यू आर हर्ट. You don't feel anything
0: of
1: for me.
0: Of course, I'm hurt. I'm badly hurt. You know, we get hurt.
1: Yeah. Now, this is, we are talking on physical things. And yehi same cheez.
0: Emotional.
1: Subtle, emotional level par bhi work hoti. Ki jitna main aapke liye kar rahi hoon, mera ye belief hota hai, aap bhi usi proportion mein mere liye karenge. Ye bahut deep belief system hai. Aur yahan kahin na kahin fir hum,
0: और ये हम जस्टिफाइड, सी वी से दैट दिस इज राइट, इट शुड बी लाइक दिस, बट देन वी हैव टू चेक कि वो मुझे पेन दे रहा है, इट मींस इट्स नॉट राइट.
1: दैट्स बिग, या दैट बिलीफ सिस्टम इज डेफिनेटली नॉट राइट, क्योंकि हर एक का पर्सनालिटी डिफरेंट है, हर एक का सोचना, हर एक का करना, इट्स नॉट दैट दे आर रॉन्ग, वो बैड है, लेकिन उनका राइट एंड रॉन्ग डिफरेंट है. आप जितना करते हो, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि आपने ये बिलीफ बनाया था कि मैं उतनी ही कैपेसिटी में करूंगी, आप हर्ट हुए जब मैं नहीं करती. अब आप अपने बिलीफ को अगर थोड़ा सा चेंज करो कि मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करते हुए मुझे अच्छा लगता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग टू मच इन रिटर्न. यहाँ तक कि लाइक वंस आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे रिटर्न में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट लाइक डूइंग इट, तो मैं कर रही हूँ. लेकिन होता ऐसे कई बार कि वो अच्छा तो कुछ नहीं किया रिटर्न में, लेकिन किसी ने हो सकता है कि एकदम
0: धोखा दे दिया,
1: कुछ गलत कर दिया, कुछ बहुत, एंड आई फेल्ट हर्ट, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा, एंड देन आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये भी तो एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक्सपेक्ट, हम ये सोच रहे थे, मैं वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, मैं ये सोच रही थी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मेरे को करने दो, मुझे करते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने बुरा कर दिया, तो दैट ऑल्सो यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशन,
0: एटलीस्ट आप कुछ मत करते.
1: सो मैंने वो बिलीफ बनाया था कि मैं अच्छा करूंगी, आप कुछ मत करना, लेकिन आपने जो मैंने सोचा, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरे ऊपर कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ गया, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन था. तो इफ आई कैन चेंज माई बिलीफ सिस्टम टू मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगता है,
0: विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और विदाउट एनी थिंग्स,
1: यू नो हाउ सिंपल माय लाइफ विल बिकम.
0: Oh yes, but right now too I am realizing how much we need to do, in the sense that how much we need to understand, you know, it's a major shift ki one realizing कि जहां मुझे बुरा लगने शुरू हो उस समय हमें रुक जाना चाहिए. एक्चुअली वी शुड नॉट ट्राई टू मूव अहेड, वी शुड लुक एट कि कौन सा बिलीफ सिस्टम है जिसने मेरा ये थॉट क्रिएट किया. अगर आपके पास कोई मन में सवाल उठता है, कोई बात अभी लग रहा है कि इससे जुड़ी हुई है, तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत मेजर नया बिलीफ सिस्टम हमने किया है कि जितने भी जो भी नेगेटिविटी मुझे होती है उसके पीछे कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है जिसे चेंज किया जा सकता है। वो चेंज कैसे होगा वो हम अगली कड़ी में जानेंगे, लेकिन अभी सिस्टर शिवानी आज एक बहुत मेजर हमें अगेन हम कहेंगे एक चाबी है, एक कुंजी है, एक की है टू एक्चुअली सॉल्व the you know it's key to happiness basically.
1: Yeah,
0: so let's reflect for some time and see how it works with us.
1: Comfortable hokar baithe, we're not doing anything unnatural. Apne aap ko hi dekhne ki koshish karte hain. Bahut sari manyataon ke aadhar par jeevan chalta aa raha hai, lekin jaise jaise हम जीवन में अपने अनुभवों को देखते, अगर वो अनुभव, वो फीलिंग्स कंफर्टेबल नहीं लगती, तो अपनी मान्यताओं को चेक करो। वो बिलीफ्स जो हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन ट्रुथ इज ऑलवेज कंफर्टेबल, ट्रुथ विल ऑलवेज मेक मी फील पीसफुल। Somewhere there is a confusion. Happiness is natural. Happiness is unconditional. Happiness is my creation. Meri khushi meri apni rachna hai. Ye kisi par bhi aadharit nahi hai. Ye mere haath mein hai. आज इस बिलीफ को लेते और सारा दिन की यात्रा पर चलते हैं और चेक करते क्या अनुभव होता है। ओम शांति।
0: ओम शांति। जिस तरह से साइलेंस में बैठकर हमने अपने सबकॉन्शियस को, आपने पहले भी कहा था कुछ कुछ बीज बोने की जरूरत है, तो आज साइलेंस में बैठकर अपने साथ इस एक बिलीफ सिस्टम को डालने की कोशिश की है और ये प्रयास संभव रहेगा कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी वैल्यू है एंड आई कैन बी हैप्पी एनी टाइम आई वांट। इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि इस श्रृंखला में जो जो हम सीख रहे हैं उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ओम शांति।

0: कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन आत्मा आणि रेडिओ वत्सगुण द्वारा प्रसारित कृषी कार्यक्रम श्रृंखला ऐकत रहा रेडिओ वत्सगुण 90.8 FM वर आवाज वाशिमचा वाशिमचा।
1: किसानों की बात रेडिओ वत्सगुण के साथ हा कार्यक्रम रेडिओ वत्सगुण ने प्रसारित केला। आमची यानंतरची उद्घोषणा काही क्षणातच।
0: कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन आत्मा आणि रेडिओ वत्सगुण द्वारा प्रसारित कृषी कार्यक्रम श्रृंखला ऐकत रहा रेडिओ वत्सगुण 90.8 FM वर आवाज वाशिमचा वाशिमचा।

नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज और स्वागत है आपका 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। इस नए वर्ष में एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जिसका शीर्षक है सुनो भाई साधो। इसमें कबीर के दोहों पर व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले कबीर की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है उसको हम देखेंगे। आज की इस शोर भरी दुनिया में जहां हर कोई चिल्ला रहा है पर कोई सुन नहीं रहा, जहां धर्म जाति और विचारधाराओं की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, वहां एक आवाज़ 500 सालों से गूंज रही है। एक ऐसी आवाज़ जो न डराती हैं न बहलाती हैं बल्कि सीधा आईना दिखाती हैं। वो आवाज़ है काशी के उस फकीर की जिसे दुनिया संत कबीर के नाम से जानती है। दोस्तों, कबीर कोई महलों में रहने वाले दार्शनिक नहीं थे, वे एक जुलाह थे। कपड़ा बुनना उनकी आजीविका थी लेकिन सत्य को बुनना उनकी साधना। उनका संघर्ष केवल गरीबी से नहीं था बल्कि उस दौर के पाखंड से था। कल्पना कीजिए उस समय की काशी की, जहां एक तरफ पंडितों का वर्चस्व था और दूसरी तरफ मुल्लाओं की सत्ता। कबीर ने इन दोनों के बीच खड़े होकर निडरता से कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी उन्होंने कभी कागज कलम छुई नहीं लेकिन उनकी आंखों ने जो देखा वह कागज की लिखी से कहीं बड़ा था। उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें शहर से निकालने की कोशिश हुई लेकिन कबीर का संघर्ष थमा नहीं, क्योंकि उनका संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के पक्ष में था। अब आप सोचेंगे कि आज 2026 में हम 500 साल पुराने कबीर की बात क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो बीमारियां तब थी वो आज भी हैं, सिर्फ उनके चेहरे बदल गए हैं। नफरत, दिखावा, कट्टरता और अहंकार। कबीर एक सामाजिक डॉक्टर थे। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करने के लिए खुद बीमार नहीं होता, वैसे ही कबीर समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उन बुराइयों का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने समाज की नब्ज पकड़ी और बताया कि जब तक पवित्रता का चश्मा पहनकर दूसरों को अपवित्र कहते रहेंगे तब तक हम इंसान नहीं बन पाएंगे। कबीर का एक दोहा हम उदाहरण के लिए देखेंगे।

इस दोहे से हमें ज्ञात करते हैं कि कबीर किस प्रकार की विचारधारा को और समाज को रचने की कोशिश कर रहे थे। इस छोटे से दोहे में कबीर ने जीवन का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु मंत्र दिया है। बाजार में खड़ा होना से तात्पर्य है, कबीर कहते हैं कि सत्य की तलाश हिमालय की गुफाओं में नहीं, बल्कि इस दुनिया के बाजार अर्थात भीड़ के बीच में है। हमें भागना नहीं है, इसी दुनिया में रहकर काम करना है। मांगे सबकी खैर का अर्थ है कि कबीर का कोई धर्म नहीं था, इसलिए वे सबकी भलाई मांग सकें। उनका प्रेम पक्षपाती नहीं था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यह सबसे क्रांतिकारी बात है। अक्सर दोस्ती हमें सच बोलने से रोकती हैं और दुश्मनी हमें अंधा कर देती हैं। कबीर कहते हैं कि इतना तटस्थ हो जाओ कि सच को सच कह सको, यह वही साधारणीकरण है जिसके बारे में हमारे दार्शनिक बात करते हैं कि अपने स्व के ऊपर उठकर पूरी दुनिया को एक समान देखना चाहिए। कबीर की देन यह है कि उन्होंने हमें स्वतंत्र होकर सोचना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना ही धर्म है। आज के इस पहले एपिसोड में बस इतना ही। कल हम कबीर के उस क्रांतिकारी विचार पर बात करेंगे जहां वे कहते हैं कि ईश्वर सातवें आसमान पर नहीं, आपके और मेरे भीतर बैठा है। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, आज किसी को धर्म या जाति की नज़र से नहीं, बस इंसान की नज़र से देखिएगा, शायद आपको वहीं कबीर मिल जाए। सुनते रहिए रेडियो मनभावन 90.8 FM, आपका दोस्त मनोज के साथ। धन्यवाद।

नमस्कार, ओम शांति। आप सबको संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, महाराष्ट्र के संत, उनके बारे में तो जानकारी होगी, निश्चित ही होगी, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र के संत नहीं है, तो सब भारत में भी उनके बारे में काफी पहचान है। इतनी कम उम्र में इतना विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखा। ज्ञानेश्वर महाराज की पहचान ज्यादातर उन्होंने जो ग्रंथ लिखा ज्ञानेश्वरी, इसके लिए की जाती है। और भी उन्होंने भागवत धर्म की स्थापना की। पंढरपुर पे पैदल वारकरी जो जाते हैं महाराष्ट्र में, उनके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। तो ऐसे ये ज्ञानेश्वर जी महाराज, प्यार से उन्हें माउली कहते हैं और हम भी उनको माउली ही कहेंगे। तो ये माउली ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ जो है वो लिखा था कि भगवद गीता जो थी संस्कृत में थी, और उस जमाने में मराठी में, उसमें प्राकृत कहते थे, मराठी भाषिकों के जानकारी के लिए उन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा, जो भगवद गीता के ऊपर निरूपण है। देखिए, भगवद गीता जो है 18 अध्याय की यह गीता है, उसमें 700 श्लोक है, और ये 700 श्लोकों के ऊपर जो निरूपण किया है माउली ने, वो 9000 ओवी मीन्स लाइनर या पंक्तियां बोलते हैं, उसमें की है। ये 9000 ओवी में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूरा हो गया, और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा पसायदान लिखा। हमारा मकसद इस रिकॉर्डिंग का, इस शेयरिंग का ये है कि ये पसायदान जो ज्ञानेश्वर जी ने या माउली ने जो लिखा है, उसके बारे में कुछ चिंतन करें, चर्चा करें। क्योंकि ये पसायदान जो है, ये पसायदान 9 लाइन में है, 9 पंक्तियों में है, 9 ओवी में है। अगर उसका शब्द से अर्थ कहेंगे, वर्ड टू वर्ड अगर उसका मीनिंग देखेंगे, तो बहुत संक्षेप में हो जाएगा, 5-10 मिनट में वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइन्स, उसके बारे में जब चिंतन करेंगे तब काफी विस्तार होगा। और हमारा संकल्प ये है, हमारा उद्देश्य ये है, हमारा मकसद ये है कि इस पसायदान के ऊपर हम कुछ चिंतन करें। जैसे हमने कहा था कि 9000 पंक्तियां ओविया थी, और उसमें से 9 ओवी में पूरा सार, मुझे लगता है पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो पसायदान में है। भगवद गीता में जो ज्ञान दिया था उसका भी कुछ एक्सट्रैक्ट होगा, वो भी ये पसायदान में है, ऐसा मुझे लगता है। ये पसायदान पहले भी मैंने पढ़ा था, अभ्यास किया था और मुखोद्गत भी किया था, लेकिन उसके पीछे इतना कुछ भाव होगा, इतना कुछ अर्थ होगा, गहन अर्थ होगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे मैं ब्रह्मा कुमारियों के संपर्क में आया, वहां का ज्ञान सुना, और फिर जब मैं पढ़ने लगा पसायदान, तब मुझे आश्चर्य लगा कि माउली ने इतना विस्तार से, इतना डेप्थ से, इतनी गहनता पूर्वक वो जो पसायदान लिखा है, उसका उद्देश्य क्या होगा। हर कोई कंपनी का मैनेजर हो या कंपनी का डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो हर कोई अपने कंपनी का एक विजन लिखता है, और ये विजन जो है, वो विजन अगर क्लियर है तो उसको बहुत अच्छा दृष्टा कहते हैं,
यमावली तो सारे विश्व की है, और ये यमावली ने जो विजन दिया है, आने वाले युग का विजन, आने वाले संसार का विजन, या उनकी जो इच्छा थी आने वाले संसार के बारे में, आने वाले विश्व के बारे में, या विश्व परिवर्तन के बारे में, उसकी पिक्चर, उसको चित्रीकरण ये पसायदान में है, ऐसा मुझे लगता है। और एक एक पंक्तियां हम अगर देखेंगे और उसका विवेचन करेंगे, तो फिर उसका गर्भित अर्थ जो है, नॉट ओनली बिटवीन द लाइन्स बट समटाइम्स बियॉन्ड द लाइन्स, हमें पता लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो शुरुआत जो पसायदान की है, आता विश्वात्म के देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदान है। और ये जो पसायदान मांगा है विश्वात्मक देव भगवान, जिसे सब हम भगवान कहते हैं, या अल्लाह कहते हैं, या गॉड कहते हैं, या खुदा कहते हैं, या और कोई भी शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं, लेकिन है तो भगवान है, तो एक सबका मालिक, सारे विश्व का भगवान है, सारे विश्व का ईश्वर है। और इसलिए आता विश्वात्म के देवे, मावली ने सिर्फ ये पसायदान जो है वो मराठी के लिए नहीं मांगा है, भारतवासियों के लिए नहीं मांगा है, उन्होंने सारे विश्व के लिए मांगा है। और विश्व का कल्याण हो, सर्वे पे सुखिन संतु, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सारे विश्व के लिए प्रार्थना है, सारे विश्व के लिए डिमांड है, सारे विश्व के लिए रिक्वेस्ट है। और इतने अच्छे शब्दों में, इतने मधुर शब्दों में मावली ने ये पसायदान मांगा है विश्वात्मक देव के पास। और ये विश्वात्मक देव को उन्होंने संतुष्ट किया है अपने वाक यज्ञ से। वाक यज्ञ मीन्स वाणी का यज्ञ। उन्होंने जो वाणी चलाई, ज्ञानेश्वरी जो सुनाई, वो वाणी का यज्ञ था। उससे उन्हें लगता था कि ये भगवान जो है विश्वात्मक देव है, संतुष्ट होगा, तोषावी संतुष्ट होगा। अब जैसे कोई संतुष्ट होता है तो दुआ निकलती है, और ये दुआ जब निकलती है तब वो दवा का काम करती है। और इसलिए पहले लाइन में उन्होंने कहा, आता विश्वात्म के देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें अश्वमेघ यज्ञ है, पुत्र कामेष्टि जो दशरथ राजा ने किया था वो यज्ञ है, और ये वाणी का भी यज्ञ है। अनेक प्रकार के यज्ञ है। ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, तब ऐसी कहानी है कि प्रभु रामचंद्र जी आए और उन्होंने असुर जो विघ्न डालते थे यज्ञ में, उसमें असुरों का निर्दालन किया। हमारा भी यज्ञ है, हम रोज खाना खाते हैं, वो भी यज्ञ है। और इसलिए मराठी में कहते हैं, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरि से, सहज हवन होते नाम घेता फुका से, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। ये सिर्फ उदर भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए हम भोजन नहीं करते हैं, लेकिन वो भी एक यज्ञ है। अग्नि जो है वो जठराग्नि है, और उसको शांत करने के लिए हम उसमें आहुति डालते हैं। ऐसे विचार से अगर हम भोजन करेंगे तो कितना कल्याण होगा। तो ऐसे मावली कहती है, ये भी एक वाणी का यज्ञ है, वाक यज्ञ है, और ये वाक यज्ञ से वो विश्वात्मक देव को संतुष्ट कर रहे हैं। तो पहली लाइन बहुत सुंदर है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। आता विश्वात्म के देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसाय दाने। इसके ऊपर अगले भाग में भी चर्चा करेंगे। तो ये पहला भाग संपूर्ण हुआ। आपसे हम इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले भाग में, अगले एपिसोड में। ओम शांति, नमस्कार।

0: थे, क्योंकि लगता था कि यही सब बातें जो बाहरी रीति से हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उसी पर खुशी निर्भर करती है। और निर्भरता बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस श्रृंखला में जहाँ हम बातें करने लगे हैं वहाँ ये बात समझ में आती है कि ये मेरी अपनी अपनी क्वालिटी भी है और मेरी अपनी क्रिएशन है। मज़ेदार बात यह है कि उसे क्रिएट करने के लिए मुझे अपने थॉट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स आ रहे हैं या मैं उन्हें क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी एक नई वोकैबुलरी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जिनका हम रिकैप करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। मैं थॉट तक तो ले आई कि जब हमने उस फीलिंग को देखा कि खुशी कहाँ है, मैंने देखा कि ये सब में ढूंढ रहे थे, ये सब में समझा वो नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने आप को चेक किया तो वो खुशी मेरी अपनी क्रिएशन मुझे समझ में आई, और मेरा थॉट मेरी उस फीलिंग को क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव खुश वाला थॉट जो था वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, और ये जो इतना पावरफुल चीज़ है, इतनी शक्तिशाली वस्तु मेरे पास है, अनुभव कहें या कुछ भी कहें, एनर्जी कहें, वो कैसे क्रिएट होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो थॉट्स क्रिएट करती हैं?
1: हमने जैसे देखा कि परिस्थितियाँ आती हैं, लोग ऊपर नीचे कई बार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, एंड थिंग्स वर बिकमिंग चैलेंजिंग, अनप्रडिक्टेबल। यू नो, सडनली समबडी बिहेव्स इन अ वेरी अनप्रडिक्टेबल वे, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो कभी ना कभी ये एक थॉट चलना शुरू हुआ कि आखिर इस तरह से अगर जीवन चलती जाएगी तो देर इज जस्ट नो वे आई कैन बी हैप्पी। तो फिर हमने जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स हैं, सॉरी, चाहे वो एंग्जाइटी है, वरी है, उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यस, सिचुएशंस आर चैलेंजिंग। तो सिचुएशन पर थॉट डिपेंडेंट है, तो यस, हमेशा खुश रहना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमेशा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने वाली है। हमेशा रिश्तों में हर चीज मेरे अनुसार चले, ये नहीं होने वाला है। लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करें, ये नहीं होने वाला है। आप जैसा मैं सोचूं वैसा बिहेव करें, ये नहीं होने वाला है। सो इफ माई हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन वी रियलाइज्ड के सिचुएशन तो बाहर से आती, थॉट हम करते, और अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें और अपने आप को चेंज करना शुरू करें, हो सकता है हम उसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर सकते। पहली बात तो हैप्पीनेस क्या है, यू नो, दैट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क। वी रियली डोंट नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम यू नो बहुत ज़्यादा कुछ उमंग उत्साह उस तरह की बात कर रहे हैं? हैप्पीनेस डजेंट मीन ऑलवेज दैट यू आर जम्पिंग अप एंड डाउन, लाइक दैट्स नॉट हैप्पीनेस। कहीं कुछ बात हो गई है, घर में कोई हादसा हो गया है, किसी कोई इलनेस है, समबडी हैज लेफ्ट द बॉडी, तो देर इज नॉट क्वेश्चन। आप बोलोगे इस टाइम हाउ कैन आई बी हैप्पी? येस, दिस टाइम आई कैन नॉट बी हैप्पी, बट कैन आई बी स्टेबल? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इज इट दैट पेन एंड सोरो ये नेचुरल ही है, ये क्रिएट करना है? क्योंकि जितना हम स्टेबल रह सकेंगे उतना हम उस सिचुएशन को अच्छी तरह से क्रॉस कर सकेंगे, और स्टेबल रहने के लिए मुझे उस सिचुएशन में राइट काइंड ऑफ थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने देखा जो थॉट हम क्रिएट करेंगे उस क्वालिटी की फिर हमें फीलिंग्स जेनरेट होंगी, वो फिर हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर हमारी पर्सनैलिटी बनती जाएगी, एंड देन माई डेस्टिनी। और थॉट्स पर इन्फ्लुएंस किसका होता, क्योंकि आज ये समझ में तो आ गया कि थॉट्स सब कुछ काम कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन थॉट्स को चेंज कैसे करूं? ये तो आदत ही पड़ गई है मुझे नेगेटिव सोचने की। तब वी सॉ लास्ट टाइम कि थॉट्स पर जो चीज़ों का इफेक्ट होता, वन इज इंफॉर्मेशन, वन इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड इज बिलीफ सिस्टम। हमारी जीवन में हम किन मान्यताओं के साथ, बिलीफ्स के साथ अपना जीवन जी रहे हैं? एंड आई फील पर्सनली कि ये तीनों में से, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्या फीड करना क्या नहीं फीड करना। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमने देखा कि हम बैठ कर उसके ऊपर वर्क करें तो वी कैन क्लीन इट ऑफ, लेकिन बिलीफ सिस्टम इज समथिंग दैट बचपन से शुरू होते होते, एज आई वॉज ग्रोइंग, मेरे अंदर बहुत गहरे डीप रूटेड है, एंड समटाइम्स आई डोंट इवन रियलाइज कि मेरे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं।
0: बिलीफ सिस्टम इन द सेंस कि बिलीफ सिस्टम बने कैसे, पूरा एनवायरनमेंट था मेरा क्या ऐसा है चीज़ जो बिलीफ सिस्टम बनाती है?
1: इट कैन बी

0: बिलीफ सिस्टम बनने के लिए भी इट कुड बी एनवायरमेंट, इट कुड बी जो हमें सिखाया गया यू नो बचपन से. लेट्स से कि एज अ चाइल्ड, कि एज अ चाइल्ड मैंने ये देखा कि जब भी मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे डांटा गया है ना, या जब भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे पेरेंट्स के अनुसार राइट नहीं था तो मुझे डांटा गया. अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मैंने देखी कि दिस इज द वे, तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि जब भी कोई कुछ ऐसा करे
1: जो आपको पसंद ना
0: जो
1: हो,
0: आपको राइट ना लगे, तो उसको चेंज करने का तरीका उसको डांटो. तो ये मैंने सीखा ना, इट्स नॉट दैट किसी ने मुझे सिखाया बैठकर, लेकिन मैंने वो सिनारियो से, मैंने सबको अपने आसपास वो करते हुए मैंने वो बिलीफ सिस्टम बनाया, दिस इज द वे इट वर्क्स. तो ये हम बिलीफ सिस्टम्स बनाते गए. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम औरों पर ब्लेम कर दें कि जो भी बिलीफ सिस्टम के लिए, हमें फिर अपने जीवन में आज स्टॉप करके चेक करके देखना पड़ेगा कि वो बिलीफ सिस्टम क्या रिजल्ट क्रिएट करता है. यू नो हर एक बिलीफ, यू नो इट्स लाइक अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर बहुत पावरफुल एक सिस्टम है जो हमारे पास है, तो एक कंप्यूटर को चलाने वाला जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम. उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास विंडोज है तो किसी के पास मैक है तो कुछ भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि सारे प्रोग्राम्स जो उस पर चलेंगे
1: वो कैसे चलेंगे.
0: तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना,
1: दिस
0: इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा,
1: इसको तो बहुत सारी चीज, अब जैसे यही एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि दर्द के साथ रहना तो नेचुरल है.
0: क्या एब्सोल्युटली ये एक नेचुरल है. आज टेंशन होना तो नेचुरल है. हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं?
1: कभी खुशी कभी गम. यस,
0: ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है. विच इज ओके, नो वन इज टू चैलेंज माय बिलीफ सिस्टम, आई हैव टू चैलेंज इट मायसेल्फ. मुझे खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ है एक मान्यता है.
1: लेकिन बिलीव जो है वो एक्सपीरियंस भी तो बन रहा होगा ना.
0: यस yes.
1: तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है, और उसको मैंने बिलीव, जैसे बचपन में भी मैं देखती आई जो, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव होते गए, अनुभवों को मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया.
0: तो अब सपोज मैंने बचपन में ये सीखा कि जब भी कोई गलती करे तो उसको गुस्सा करो, ठीक है, तो मैंने भी ये पकड़ लिया. या मैंने ये सीखा कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं ना तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब नहीं गुस्सा करते ना
1: तब
0: मैं नहीं पढ़ती, तो मेरा अपना मस्ती चलती रहती है. लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने पढ़ा. तो मेरा क्या बिलीव सिस्टम बना कि किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाने का तरीका क्या है, उनको डांट दो ना, वो काम कर देते हैं. नाउ आई टुक दिस बिलीफ सिस्टम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट इन माय लाइफ. तो चाहे वो मेरे ऑफिस में है, चाहे वो मेरे घर पर है, आई एम वर्किंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि किसी से काम करवाना उनको डांट दो. काम भी हो रहा है, लेकिन क्या मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका इफेक्ट होता है? क्या मेरे रिश्तों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है? एक तरफ से आई एम सेइंग मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हर एक कह रहा है मुझे खुशी चाहिए, दूसरी तरफ से मैंने बिलीफ सिस्टम बनाया कि गुस्से से काम होता है. हैप्पीनेस एंड एंगर, ये दोनों इकट्ठे कैसे रहेंगे? हाउ विल इट हैपन? आज मुझे रोज काम करना है, रोज लोगों से काम करवाना है, एंड रोज मैं इसी बिलीफ सिस्टम से काम कर रही हूँ कि गुस्से से काम होता है, गुस्से से काम. तो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर गुस्से वाली, दिस एनर्जी गोज आउट एंड देन द सेम एनर्जी कम्स बैक. तो इतना गुस्सा क्रिएट कर कर कर के सारा दिन, देन व्हाई एम आई सेइंग कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए?
1: काम तो होता गया ना, तो मैं तभी उसको यूज करूंगी ना जब काम नहीं हो रहा होगा.
0: राइट, तो आप काम करवाने के लिए उसको यूज कर रहे हो ना, लेकिन हमने कभी स्टॉप करके लाइफ में ये चेक करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए जीवन में. ठीक है, सपोज हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि गुस्से से काम होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि वंस आई वर्क विद दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए. अब रिजल्ट तो वो वाला नहीं आ रहा ना, रिजल्ट खुशी नहीं आ रही. गुस्सा बार बार करने के बाद खुशी रिजल्ट नहीं हो सकती. तो अगर वो रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन में अपनी जीवन को जीती हूँ कि इंस्ट्रक्शन कुछ और फीड करती जा रही हूँ और रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट करती जा रही हूँ. करूँ गुस्सा, करूँ चिंता और चाहिए खुशी, तो कहाँ से होगी? नाउ अब गुस्से से काम भी क्यों करवा रहे हैं? चाहिए तो खुशी, लेकिन दूसरा बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है कि काम जितना होता जाएगा
1: खुशी
0: सफलता मिलती जाएगी. जितनी सफलता मिलेगी उतनी खुशी मिलेगी. नीड टू स्टॉप एंड चेक. These are belief systems.
1: तो ये तो पूरी जिंदगी मेरे belief system पे जुड़ी
0: है। सब कुछ तो belief system पे है। हर that's why we said it's the operating system. जिस quality का operating system है, सब कुछ उस पर based है। सारा कुछ उस पर बेस्ड होगा। सारा दिन में हमें पता भी नहीं चलता हम कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ काम करते
1: हैं। तो हमें पूरा विंडोज खोलना पड़ेगा। वो इट्स अ बिग प्रोसेस एक्चुअली।
0: बट द थिंग इज के बिलीफ सिस्टम एंड वन इज द ट्रुथ। इज दिस द ट्रुथ? एंगर इज नेचुरल। ये एक बिलीफ है या ये एक सत्यता है? ये मुझे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये जो बिलीफ सिस्टम्स, अगर हम एक भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ चले, सी द क्रिटिकल पार्ट क्या है। बिलीफ से थॉट क्रिएट होगा, थॉट से डेस्टिनी क्रिएट हो रही है। अगर मेरा एक भी बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा?
1: मेरी डेस्टिनी पर
0: आएगा। एंड दैट्स व्हाई स्टॉपिंग एंड चेकिंग माय बिलीफ सिस्टम सारा दिन में, अगर आपके साथ कुछ भी बाहर आप जो एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, कहीं आपको अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है, जस्ट हैव टू स्टॉप एंड चेक मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें काम कर रहा है। एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम उसी टाइम दिखाई दे देगा इमीडिएटली। आपको सिर्फ वो इक्वेशन बनाकर रखनी है अपनी लाइफ में। बिलीफ इज इक्वल टू थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी। बीच का भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ो उसको, दैट तो वो ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग। जैसे ही आपके अंदर कोई थॉट क्रिएट हुई, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम दोनों बैठे हैं, अभी चार लोग आते हैं सामने, एंड वो चार लोग मेरे से नहीं बात करते, वो चार लोग ज्यादा आपके साथ ही बात करने लग जाते हैं। यू नो दे प्रेजिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू एंड आई एम नॉट फीलिंग नाइस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। मुझे अगर फीलिंग के लेवल पर दिखाई देता, देन आई विल गो बैकवर्ड्स। आई विल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कौन सी वाली थॉट क्रिएट हो रही है इसके पीछे, क्या थॉट क्रिएट हो रही है? तो थॉट ये क्रिएट हो रही है, इज शी बेटर देन मी, इज इट दैट पीपल लाइक हर मोर, these kind of thoughts I am creating, और ये thought is making me feel low. अब इसके पीछे मुझे belief system अपना check करना पड़ेगा, कौन से belief की वजह से मैंने ये thought create की। मेरा belief वो था कि जितना लोग मुझे appreciate करेंगे उतना I am a better person.
1: Oh God,
0: my being good, worthy, nice, whatever लेबल हमें लेना है।
1: आई थिंक यू सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम।
0: इट इज बेस्ड ऑन लोगों का अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इवैल्यूएट कर सकती। तो वो बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने वो चार लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए देखा, मैंने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इमिजिएटली द थॉट इज देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, शी इज अ बेटर पर्सन, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, पीपल डोंट लाइक मी। अभी उसके बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होगी,
1: और उसके साथ साथ और इसके साथ जुड़ी हुई और बाकी और गंदी गंदी फीलिंग्स भी आ सकती है, यू नो। ये एक्चुअली जेलेसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर।
0: यस, द जेलेसी किस बेसिस पर स्टार्ट हुई?
1: तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी एंड यू,
0: इट हैज नथिंग,
1: इट हैज एक्चुअली टू डू विद अ बिलीफ सिस्टम व्हिच एक्चुअली अगर मेरे सामने आए तो मुझे कहेगा कि लोगों से क्या फर्क पड़ता है।
0: एब्सोल्युटली।
1: लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैंने फिट किया।
0: हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर हम उसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेक कर लेंगे कि कौन सा बिलीफ मेरा वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर यही बिलीफ वर्क हुआ कि जितना लोग जिसको अप्रिशिएट करते वो ज्यादा अच्छा है। एंड जहाँ ये लोग मेरे पास बात करने नहीं आए, मतलब आई एम नॉट गुड। नाउ दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, और ये डिस्टर्बेंस के कारण मैं जेलस फील करूंगी, फिर मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी। इट्स नथिंग टू डू विद यू एक्चुअली, आप बहुत जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फील करवाना है ना। अब इससे रिस्क ये होगा कि भले आपके सामने नहीं, लेकिन अपने आप को ही अच्छा फील करने के लिए मैं आपकी बुराइयां देखना शुरू कर दूंगी कि क्या है इसमें, क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पता ये एक्चुअली कैसी है, इनको कुछ मालूम, यू नो। एंड माय इंटेलेक्ट, माय माइंड विल स्टार्ट गोइंग एंड लुकिंग एट,
1: एंड यू नो हियर दिस डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज़ आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी, यू नो। आप दूर होते जाते हैं ऐसे ही।
0: अब जब मैं ये एनर्जी क्रिएट करूंगी तब एक्चुअली लोग मेरे से परे हटेंगे, एक्चुअली हटेंगे, क्योंकि मैंने कौन सी एनर्जी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, नेगेटिविटी की, जेलेसी की। फिर हो सकता है जब मुझे चांस मिले मैं उन्हीं चार लोगों के पास जाकर इनडायरेक्टली थोड़ी सी आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं, तो मैं उनको बोल दूंगी आपको क्या पता है कानुप्रिया के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम दे विल कम टू मी बिकॉज़ एंड नाउ आई एम एक्चुअली टेकिंग देम अ away from me only because of this one belief system. अब अगर उसी सीन में मैं अपना belief system change करूं, I am who I am. I know who I am. I'm not perfect. I know that very well कि मेरे अंदर अपनी कमजोरियां हैं, अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन पर मुझे ही काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या किस बेसिस पर मेरे पास आते हैं, दैट डजंट मैटर. ये जर्नी मेरी अपनी है. तो मेरा आपके साथ जो कंपैरिजन करने की यात्रा होगी, दैट विल स्टॉप. हु आई एम इज बेस्ड ऑन हाउ आई नो माई सेल्फ, नॉट बेस्ड ऑन हाउ पीपल appreciate me or say to me. Yes, ये natural है कि अगर आप एक अच्छी energy create करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो benchmark नहीं है. लोगों का आपके पास आना, लोगों का आपके साथ अच्छी तरह से बात करना, इसके पीछे बहुत सारे factors हो सकते हैं. It is definitely not necessary. आज के समय में we can see it. It is possible कि I don't like you और फिर भी मैं आपके पास आऊँ, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँ. एंड अगर आप उस बेसिस पर अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे तो वो तो बहुत रिस्की है. मुझे अपने आप को खुद इवैल्यूएट करना आना चाहिए. बट फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज माई बिलीफ सिस्टम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है और मुझे अपने उस पर काम करना है, अपनी कमजोरियों पर. लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं. हाँ, लोग जो कहते हैं, आई कैन टेक दैट एज अ फीडबैक, बट जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क विद मायसेल्फ. तो एक एक बिलीफ सिस्टम मेरे थॉट पर एंड फिर मेरी डेस्टिनी पर काम करता है. और फिर हम कहते हैं, नहीं नहीं, इसमें मेरा क्या है, ये तो इनकी वजह से हुआ. इट इज टोटली
1: ऑफ कोर्स, यू नो. एंड व्हाट हैपेंस, एंड सडनली आई रियलाइज दैट दिस इज वेयर द फ्रेंडशिप स्टार्ट्स, यू नो, सोरिंग अप.
0: वो तो डेस्टिनी फॉर धीरे बिल्कुल. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रेंडशिप. मैं कितने दर्द से गुजरने वाली हूँ अंदर, मेरे अंदर वे जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है. क्यों आ जाता है? हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं. ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है, कॉम्पिटिशन,
1: कि अगर मैं, मुझे अच्छा होने के लिए या मुझे जीतने के लिए किसी को तो हारना ही है. जिंदगी एक हार जीत है.
0: जिंदगी एक हार जीत है, बताओ. ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना है.
1: जिंदगी इज, लाइफ इज अ वॉर,
0: लाइफ इज अ गेम.
1: यस,
0: लाइफ, अगर गेम बोलेंगे, लाइफ इज अ गेम, तो इट ऑलवेज बी के देयर विल बी अ विनर एंड देयर विल ऑलवेज बी अ लूजर. अब अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलूं कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ गेम, इट्स अ वॉर, तो मैं सारा दिन क्या करूंगी औरों के साथ?
1: खेल खेलती रहूंगी ना, गेम खेलती रहूंगी.
0: यस, एंड सारा
1: दिन गेम खेलने में मैं जीत हार को देखती रहूंगी, कौन जीता कौन हारा.
0: एब्सोल्युटली. और जैसे ही अगर मुझे कहीं दिखाई दिया कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कुछ भी कर देना है आपसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आपको क्रिटिसाइज करके आपको नीचे गिराना है. मतलब आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मी गोइंग अहेड ऑफ यू. दिस इज अ बिलीफ सिस्टम. तो एक बिलीफ सिस्टम मेरे पूरे अंदर की सोच को, मेरी फीलिंग को सारा चेंज कर सकता है. एक बार तो रुक कर देखें, वेयर इज द कॉम्पिटिशन.
1: अच्छा, किस बात का कॉम्पिटिशन? कि मेरा जो ये थॉट क्रिएट हुआ है वो किस बिलीफ सिस्टम पे है?
0: स्टॉप करके देखना पड़ेगा. हाँ. क्या इसके पीछे मेरे अंदर, दिस हैपन्स स्लोली, ऑब्वियसली वो एकदम से पहले दिन पर नहीं होगा, लेकिन कई बार जब भी आपके बिलीफ आपको ध्यान में आए, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, क्योंकि इतने सारे बिलीफ हमारे, इतने सारे बिलीव्स हैं कि सपोज मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए मुझे. ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. अगर आपने नहीं अप्रिशिएट किया तो मुझे बुरा. क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, जब मैंने किसी के लिए कुछ किया तो अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए.
1: It's so natural,
0: प्रेज तो मिलना ही. इट्स सो नेचुरल.
1: सी, इट इज नेचुरल. मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट.
0: जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं, हमें इमीडिएटली पता चल जाता है, नहीं, मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहती थी. या बिलीफ सिस्टम, अगर मैंने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी तो रिटर्न में अच्छा ही करोगे. बिलीफ सिस्टम है
1: तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा करेगा.
0: क्या जरूरी है आज के वो अच्छा करेगा?
1: हाँ, वो किस थॉट प्रोसेस में, और अच्छा, और अच्छा क्या होता
0: और
1: क्या है?
0: अच्छा और बुरा तो मेरे रेफरेंस पॉइंट से है ना. अच्छा और बुरा आपके रेफरेंस पॉइंट से तो है ही नहीं. आप अपने अनुसार तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो वैसे भी, लेकिन मेरा बेंचमार्क वो
1: ये बना रखा मैंने. ओ यस, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आती हूँ, मैं आप जब बीमार हो जाते हो मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ, मैं बीमार होकर पूछा तक नहीं आप
0: ना से. फिर थॉट कौन से क्रिएट हुई, फीलिंग कौन से क्रिएट हुई, अगली बार मैं नहीं करूंगी आपके लिए. डेस्टिनी. दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग. नेक्स्ट वी चेंज आवर बिलीफ सिस्टम एंड वी से मैं वो करूंगी जो करते हुए
1: मुझे अच्छा
0: लगता है, नॉट मैं वो करूंगी ताकि इन रिटर्न आप करेंगे, क्योंकि उस बिलीफ सिस्टम से मुझे क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला,
1: हर पेन, यस रिजेक्शन, पेन अननेसेसरीली, यू नो, एंड देन वी स्टार्ट प्रेशराइजिंग द अदर पर्सन आल्सो.
0: एब्सोल्युटली,
1: यू नो, वी स्टार्ट एक्सपेक्ट, यही एक्सपेक्टेशंस आने लगती हैं फिर.
0: मैंने आपके लिए इतना किया, हाँ. आपने मेरे लिए क्या किया, या मैंने आपके लिए इतना पूरी जीवन मैंने आपके लिए ही किया, आपने क्या किया. तो ये बिलीफ सिस्टम्स की चेकिंग क्यों जरूरी है, बिलीफ सिस्टम्स को धीरे धीरे चेंज करते जाएं और वो वाले बिलीफ सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें जो हमारे जीवन को स्मूथ, इजी एंड हैप्पीनेस हम क्रिएट कर सकते हैं. इफ आई कैन चेंज माय बिलीफ सिस्टम एंड आई कैन से आई विल डू व्हाट आई वांट without expecting anything. Is it possible to lead?
1: Saying it is easy.
0: That's ek bar se, ha. So doing will come with practice, na? Yeah. You know,
1: see, again, this pain. Again, this is what I'm saying. कि बार बार हम जो बात कर रहे हैं happiness index. अगर मैंने कुछ किया हुआ है किसी के लिए और वो वापस या मेरी जब सिचुएशन आई तो उसने वैसे नहीं रिएक्ट किया या नहीं किया, तो वो जो पेन है उसमें मैं उस वक्त तो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकती,
0: नहीं कर सकती, क्योंकि आपने वो प्रोग्रामिंग अपनी कर ली थी कि मैंने आपके लिए किया
1: तो मुझे आपको करना
0: ही है, आपको करना ही है. यू सी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जिसके लिए मैं अच्छा करूंगी उसको मेरे लिए अच्छा करना ही है. जैसे ही वो अगर नहीं करते हैं या वो उस तरह से नहीं कर, सी एवरी वन इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. हो सकता है आपकी नेचर है कि आप बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब आप डिनर होस्ट करेंगे तो आप इतना कुछ कर देंगे, आप गिफ्ट्स देंगे तो इतने देंगे, आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं. हो सकता है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. मेरे लिए आप घर पर आओगे तो मैं पूछूंगी आप चाय पियोगे क्या, यू विल से लाइक आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो पूरा डिनर आपके लिए बनाया था और आप मुझे पूछ रहे हैं चाय पियोगे कि नहीं पियोगे. यू आर हर्ट. You don't feel anything
1: of
0: for me.
1: Of course, I'm hurt. I'm badly hurt. You know, we get hurt.
0: Yeah. Now, this is, we are talking on physical things. And yehi same cheez.
1: Emotional.
0: Subtle, emotional level par bhi work hoti. Ki jitna main aapke liye kar rahi hoon, mera ye belief hota hai, aap bhi usi proportion mein mere liye karenge. Ye bahut deep belief system hai. Aur yahan kahin na kahin fir hum,
1: और ये हम justified, see, we say that this is right, it should be like this, yes. But then we have to check कि वो मुझे pain दे रहा है, it means it's not right.
0: That's big, yeah, that belief system is definitely not right. Oh. क्योंकि हर एक का personality different है, हर एक का सोचना, हर एक का करना, it's not that they're wrong, वो bad है, लेकिन उनका right and wrong different है. आप जितना करते हो, मेरी capacity नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि आपने ये बिलीव बनाया था कि मैं उतनी ही कैपेसिटी में करूंगी, आप हर्ट हुए जब मैं नहीं करती. अब आप अपने बिलीव को अगर थोड़ा सा चेंज करो कि मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करते हुए मुझे अच्छा लगता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग टू मच इन रिटर्न. यहाँ तक कि लाइक वंस आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे रिटर्न में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट लाइक डूइंग इट, तो मैं कर रही हूँ. लेकिन होता ऐसे कई बार कि वो अच्छा तो कुछ नहीं किया रिटर्न में, लेकिन किसी ने हो सकता है कि एकदम
1: धोखा दे दिया,
0: कुछ गलत कर दिया, कुछ बहुत, एंड आई फेल्ट हर्ट, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा, एंड देन आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये भी तो एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक्सपेक्ट, हम ये सोच रहे थे, मैं वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, मैं ये सोच रही थी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मेरे को करने दो, मुझे करते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने बुरा कर दिया, तो दैट ऑल्सो यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशन.
1: एटलीस्ट आप कुछ मत करते.
0: सो मैंने वो बिलीफ बनाया था कि मैं अच्छा करूंगी, आप कुछ मत करना, लेकिन आपने जो मैंने सोचा, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरे ऊपर कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ गया, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन था. तो इफ आई कैन चेंज माय बिलीफ सिस्टम टू मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगता है,
1: विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और विदाउट एनीथिंग,
0: यू नो हाउ सिंपल माय लाइफ विल बिकम.
1: Oh yes, but right now too I am realizing how much we need to do, in the sense that how much we need to understand, you know, it's a major shift ki one realizing कि जहां मुझे बुरा लगने शुरू हो उस समय हमें रुक जाना चाहिए. एक्चुअली वी शुड नॉट ट्राई टू मूव अहेड, वी शुड लुक एट कि कौन सा बिलीफ सिस्टम है जिसने मेरा ये थॉट क्रिएट किया. अगर आपके पास कोई मन में सवाल उठता है, कोई बात अभी लग रहा है कि इससे जुड़ी हुई है, तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत मेजर नया बिलीव सिस्टम हमने किया है कि जितने भी जो भी नेगेटिविटी मुझे होती है उसके पीछे कोई ना कोई बिलीव सिस्टम है जिसे चेंज किया जा सकता है। वो चेंज कैसे होगा वो हम अगली कड़ी में जानेंगे, लेकिन अभी सिस्टर शिवानी आज एक बहुत मेजर हमें अगेन हम कहेंगे एक चाबी है, एक कुंजी है, एक की है टू एक्चुअली सॉल्व it's key to happiness basically.
0: Yeah,
1: so let's reflect for some time and see how it works with us.
0: Comfortable hokar baithe, we're not doing anything unnatural. Apne aap ko hi dekhne ki koshish karte hain. Bahut sari manyataon ke aadhar par jeevan chalta aa raha hai. Lekin jaise jaise हम जीवन में अपने अनुभवों को देखते, अगर वो अनुभव वो फीलिंग्स कंफर्टेबल नहीं लगती तो अपनी मान्यताओं को चेक करो। वो बिलीफ्स जो हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन ट्रुथ इज ऑलवेज कंफर्टेबल, ट्रुथ विल ऑलवेज मेक मी फील पीसफुल। Somewhere there is a confusion. Happiness is natural. Happiness is unconditional. Happiness is my creation. Meri khushi, meri apni rachna hai. Ye kisi par bhi aadharit nahi hai. Ye mere haath mein hai. आज इस बिलीफ को लेते और सारा दिन की यात्रा पर चलते हैं और चेक करते क्या अनुभव होता है। ओम शांति।
1: ओम शांति। जिस तरह से साइलेंस में बैठकर हमने अपने सबकॉन्शियस को, आपने पहले भी कहा था कुछ कुछ बीज बोने की जरूरत है, सो आज साइलेंस में बैठकर अपने साथ इस एक बिलीफ सिस्टम को डालने की कोशिश की है और ये प्रयास संभव रहेगा कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी वैल्यू है एंड आई कैन बी हैप्पी एनी टाइम आई वांट। इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि इस श्रृंखला में जो जो हम सीख रहे हैं उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ओम शांति।